ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 4 अगस्त मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानों से सुने समाचार। जापान के कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए शक्तिशाली भूकंप को एक सप्ताह पूरा हो गया है। इस भूकंप में कई लोग मारे गए और हजारों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गौरतलब है कि 28 जुलाई को मैग्नीट्यूड 7.1 का भूकंप आया था। उकी शहर और हिकावा नगर में इस भूकंप की तीव्रता जापान के भूकंप मापी पैमाने पर 7 दर्ज की गई थी, जो सर्वोच्च स्तर है। मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक कुमामोतो प्रीफेक्चर 38 मौतों की पुष्टि कर चुका था, जिनमें से एक की मौत शायद आपदा संबंधी कारणों से हुई है। मंगलवार दोपहर 2 बजे तक प्रीफेक्चर के 146 आश्रय स्थलों में 7,600 से अधिक लोग रह रहे थे। 13,300 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से करीब 700 पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इस क्षेत्र में भीषण गर्मी भी लोगों की तकलीफ बढ़ा रही है। सोमवार को प्रीफेक्चर में तापमान रिकॉर्ड तोड़ते हुए 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इसके अलावा क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां अब भी उच्च बनी हुई हैं। पिछले सप्ताह के भूकंप के बाद से मंगलवार सुबह 10 बजे तक 390 से अधिक झटके महसूस किए जा चुके थे। कुमामोतो प्रीफेक्चर में आए शक्तिशाली भूकंप को एक सप्ताह पूरा हो चुका है और ऐसे में एक विशेषज्ञ ने आश्रय स्थलों में रहन सहन की बेहतर परिस्थितियों की मांग की है, ताकि हताहतों की संख्या को बढ़ने से रोका जा सके। गौरतलब है कि आपदा संबंधी कारणों से एक महिला के मारे जाने की खबर मिली है। माना जाता है कि इस महिला ने एक कार में शरण ली थी, जिस दौरान तापघात से उसकी मौत हो गई। जापानी रेडक्रॉस साइतामा अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी सुबोई मोतोहिरो ने आगाह किया है कि अगर आश्रय स्थलों में रहन सहन की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि 2024 के नोटो प्रायद्वीप भूकंप के लगभग 7 से 10 दिन बाद आपदा संबंधी मौतों की संख्या चरम पर पहुंच गई थी। सुबोई ने रहन सहन की बिगड़ती परिस्थितियों के कारण तनाव होने से दिल के दौरे और अस्थमा के बढ़ते जोखिम के बारे में चेतावनी दी है। उनका ये भी कहना है कि कुमामोतो में भीषण गर्मी से तापघात की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। उन्होंने आश्रय स्थलों में रहन सहन की परिस्थितियां सुधारते हुए उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। शक्तिशाली तूफान डॉल्फिन के मंगलवार को पश्चिम की ओर बढ़ने के कारण टोक्यो के ओगासावारा द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल रही हैं। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने डॉल्फिन तूफान को विशाल और बेहद शक्तिशाली बताया है। अधिकारियों ने द्वीपवासियों से ऊंची लहरों और तेज हवाओं से सावधान रहने तथा बुधवार तक जरूरत ना पड़ने पर घर से बाहर ना निकलने का आग्रह किया है। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार ओगासावारा में बुधवार तक समुद्र बेहद अशांत रहेगा। मंगलवार को लहरों की ऊंचाई 11 मीटर और बुधवार को 9 मीटर रहेगी। अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार को हवा की रफ्तार इतनी तेज हो सकती है कि उससे चीजें उड़ने या ट्रक पलटने का खतरा रहेगा। आशंका है कि डॉल्फिन तूफान तेज हवाओं के घेरे के साथ पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ओकिनावा और अमामी क्षेत्रों के निकट पहुंचेगा। ओकिनावा में बुधवार से और अमामी में बृहस्पतिवार तक समुद्र बेहद अशांत रहने का अनुमान है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: म्यांमार की सेना समर्थित सरकार का कहना है कि लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू ची ने अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति आईसीआरसी के एक प्रतिनिधि से मुलाकात की है। सरकार के अनुसार म्यांमार में आईसीआरसी प्रतिनिधि आर्नोट देबबाक ने सोमवार सुबह राजधानी नेपिदो में आंग सान सू ची से मुलाकात की। इस खबर के साथ प्रकाशित तस्वीरों में दोनों को हाथ मिलाते देखा जा सकता है। एक अन्य तस्वीर में सू ची को संभवतः अपने 81वें जन्मदिन का केक काटते दिखाया गया है, जो जून में था। आईसीआरसी के अनुसार सोमवार को हुई मुलाकात स्वतंत्रता से वंचित लोगों से मिलने के लिए उसके मानकों और प्रक्रियाओं के अनुरूप थी। उसका कहना है कि दोनों ने अकेले में बात की। सेना ने 2021 में तख्ता पलटकर सत्ता हथियाने के बाद से सू ची को हिरासत में रखा हुआ है। सैन्य शासन के तहत चले एक मुकदमे में सू ची को भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया था। सेना समर्थित सरकार ने अप्रैल में घोषणा की थी कि सू ची को एक निर्धारित आवास में नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन सरकार ने उनके सटीक ठिकाने का खुलासा अब तक नहीं किया है और ऐसे में सू ची के स्वास्थ्य और रहन सहन की स्थिति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। टोक्यो के एक चिड़ियाघर ने बताया है कि 3 शेरों की मौत हो गई है। पशु चिकित्सकों को संदेह है कि उनकी मौत तापघात से हुई। जुलाई मध्य में तामा चिड़ियाघर के 16 शेरों में से 10 बीमार पड़ गए। इनमें से कुछ अपने पैरों पर खड़े होने में असमर्थ हो गए और अन्य की खुराक कम हो गई। कर्मचारियों ने शेरों के शरीर को ठंडा करके और दवा देकर उनका इलाज करने की कोशिश की, फिर भी 28 जुलाई को 3 वर्षीय शेरनी की मौत हो गई। उसके बाद 31 जुलाई को 11 वर्षीय और 2 अगस्त को 15 वर्षीय शेरनी की भी मौत हो गई। चिड़ियाघर के अनुसार जांच के नतीजे आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा, लेकिन पोस्टमार्टम से पता चला है कि तीनों शेरनियों के शरीर में पानी की कमी थी और कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। 3 अन्य शेरों का इलाज अभी भी जारी है। चिड़ियाघर का कहना है कि वो इन मौतों को गंभीरता से ले रहा है और वो बाकी बीमार शेरों का इलाज करना जारी रखेगा और उनकी सेहत का ध्यान रखेगा। उसका कहना है कि जनता को शेर दोबारा कब दिखाए जाएंगे, इस बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है। जापान के 3 प्रमुख वित्तीय समूहों ने जून तक के 3 महीनों के लिए रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जिसका एक कारण उच्च ब्याज दरों से आय में वृद्धि है। मित्सुबिशी यूएफजे ने 800 अरब येन यानी 5 अरब डॉलर से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में येन में लगभग 48% की वृद्धि है। सुमितोमो मित्सुई ने 500 अरब येन का मुनाफा दर्ज किया, जो 33% का इजाफा है। वहीं मिजुहो ने 45% की वृद्धि के साथ 420 अरब येन का लाभ कमाया। सुमितोमो मित्सुई और मिजुहो के लिए लगातार 3रे वर्ष ये त्रैमासिक आंकड़े रिकॉर्ड उच्च हैं। ब्याज से होने वाली आय में बढ़ोतरी के अलावा विलय व अधिग्रहण सेवाओं से प्राप्त कमीशन ने भी मजबूत परिणामों में योगदान दिया।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।